0: पहले टॉप का हीरो था, अब फ्लॉप का हीरो।
1: रोलिंग, तो पैसों की बात कौन करेगा?
2: बताइए कैसा दिया?
0: अबे ये क्या तरकारी लेने आया क्या? और ये दो भाई, एक उदय का भाई और दूसरा मजनू का भाई, फिल्म में ये भी घुस पड़े।
3: ये कोई पेंटिंग है घोड़े के ऊपर गधा?
4: मैं बताता हूँ मेरी पेंटिंग, गधे के ऊपर घोड़ा।
0: पेंटिंग की सिक्वल पहली बार देख। हमारी फिल्म आर्मी वाली,
5: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है।
0: अन्ना, कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
6: वो जो छपरी ने किया है ना, अपने को भी करने का है।
0: ये स्टंट
7: एक्शन मेरे को नहीं करते। एक्शन
1: गांव वालों, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली है।
8: अरे हमारे भारतीय फौजी आए हैं,
1: ये आजादगंज को आजाद कराने आए हैं।
9: अपने घर
10: इसको टच रोल दे दिया कि तो हमें खा जाएगी।
11: अरे वो पुरानी चावल है।
12: मैं किस लिए फिल्म में?
11: ग्लैमर क्लाइमेक्स शूट कर ले क्या?
0: कैसे करेंगे? विलन चाहिए, गुंडे चाहिए, कहाँ से लाएंगे? इनको असलियत बतानी पड़ेगी कि हम लोग असली आर्मी वाले नहीं है। हमें जाने दो मालिक, हम सब भांड है, रोजी रोटी के लिए काम करते हैं।
11: तेरी शक्ल कहीं देखी हुई है।
8: आप फ्लॉप फिल्म में भी देखते हो?
9: पाजी आप जाके समझाओ ना, आपका नाम तो दलेर है।
0: क्या दलेर? दलेर दलेर नाम होने से कोई दलेर नहीं हो जाता।
13: मेरी बीबी का नाम शांति है, सारा दिन चपड़ चपड़ करती रहती है। मेरी साली का नाम शर्मिली है, उससे बेहतर लड़की मैंने आज तक कहीं नहीं देखी।
0: तन बड़ा शौक ना दलेर बने था, जब तू बने दलेर तो मैं मेहंदी।
14: कंग्रेचुलेशन।
15: Don't put

0: hat
1: for your handsome boy?
2: No, I'm not her.
3: तूने तो ऐसे रिया किया जैसे तुझे किसी ने गाली दे दी हो, इतनी बुरी हो मैं।
2: मैंने तो ये सोच के कहा था लेकिन तुझे बुरा ना लग जाए।
4: पता नहीं मैं तेरे लायक भी हूँ या नहीं।
3: Hey. कपड़े पहन के कौन सोता है?
5: तो वैसे ही
3: ट्राई करना। नो गर्ल्स एंड योर बॉयज वेल थैंक यू। बेबी यार टू लेट।
2: मैं तो सिर्फ अपने बॉयज को थोड़ी फ्रेश एयर दे रहा था।
3: रियली
2: व्हाई नॉट।

0: तू अब तक सिंगल कैसे?
1: जो जब तक है तब तक है, ये फॉरएवर वाली बकवास है रंगोली। सब अपनी अपनी एक्सपायरी डेट के साथ आते हैं और एक्सपायरी डेट के बाद तो दवा भी जहर बन जाती है, राइट? दोस्ती की कोई वैल्यू नहीं है ना तुझे, उतने अच्छे दोस्त भी नहीं है।
2: वो कुछ कर तो नहीं लेगा ना?
3: हमारी बेवकूफी पे वो अपनी जान क्यों लेगा?
2: जान लेगा? What is wrong with you? सीधा सुसाइड पे पहुंच गई।
3: और क्या बता?

0: क्या बात करे मुंडू,
1: सौदा कर रहे तेरा। मैंने कहा हीरा मिल ही गया है तो बोली लगा ले।
0: मैं हीरा नहीं कोहिनूर हूँ, इतना आसान नहीं है मुझे खरीद।

0: पहले टॉप का हीरो था, अब फ्लॉप का हीरो।
1: रोलिंग, तो पैसों की बात कौन करेगा?
2: बताइए कैसा दिया?
0: अबे ये क्या तरकारी लेने आया क्या? और ये दो भाई, एक उदय का भाई और दूसरा मजनू का भाई, फिल्म में ये भी घुस पड़े।
3: ये कोई पेंटिंग है? घोड़े के ऊपर गधा?
4: मैं बताता हूँ मेरी पेंटिंग, गधे के ऊपर घोड़ा।
0: पेंटिंग की सिक्वल पहली बार देख। हमारी फिल्म आर्मी वाली,
5: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है।
4: अन्ना, कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
0: माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक।
6: वो जो छपरी ने किया है ना, वो अपने को भी करने का है।
0: ये स्टंट
7: एक्शन, मेरे को नहीं करने का एक्शन।
1: गांव वालों, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली है।
8: अरे हमारे भारतीय फौजी आए हैं,
1: ये आजादगंज को आजाद कराने आए हैं।
9: अपने घर
10: इसको कच रोल दे दिया तो हमें खा जाएगी।
11: अरे वो पुरानी चावल है।
12: मैं किस लिए फिल्म में?
11: ग्लैमर क्लाइमेक्स शूट कर ले क्या?
0: तो कैसे करेंगे? विलन चाहिए, गुंडे चाहिए, कहाँ से लाएंगे? इनको असलियत बतानी पड़ेगी कि हम लोग असली आर्मी वाले नहीं है।
13: हमें जाने दो मालिक, हम सब भांड है, रोजी रोटी के लिए काम करते हैं।
11: तेरी शक्ल कहीं देखी हुई है।
14: आप फ्लॉप फिल्म में भी देखते हो?
15: पाजी, आप जाके समझाओ ना, आपका नाम तो दलेर है।
16: क्या दलेर? दलेर दलेर नाम होने सर को दलेर नहीं हो जाता।
17: मेरी बीबी का नाम शांति है, सारा दिन चपड़ चपड़ करती रहती है। मेरी साली का नाम शर्मिली है, उससे बेहतर लड़की मैंने आज तक कहीं नहीं देखी।
16: तन बड़ा शौक है ना दलेर बने था, जब तू बने दलेर तो मैं मेहंदी।
0: कंग्रेचुलेशन।
18: Let's go!

0: A hat for your handsome boy.
1: No, I'm not her.
2: तूने तो ऐसे रिया किया जैसे तुझे किसी ने गाली दे दी हो, इतनी बुरी हूँ मैं।
1: मैंने तो ये सोच के कहा था लेकिन तुझे बुरा ना लग जाए।
3: पता नहीं मैं तेरे लायक भी हूँ या नहीं।

0: कपड़े पहन के कौन सोता है?
1: तो वैसे ही
0: ट्राई करना. योर गर्ल्स एंड योर बॉयज विल थैंक यू.
2: बेबी यार इट्स टू लेट.
3: मैं तो सिर्फ अपने बॉयज को थोड़ी फ्रेश एयर दे रहा था.
2: रियली
3: व्हाई नॉट?

0: पहले टॉप का हीरो था, अब फ्लॉप का हीरो।
1: रोलिंग, तो पैसों की बात कौन करेगा?
2: बताइए कैसा दिया?
0: अबे ये क्या तरकारी लेने आया क्या? और ये दो भाई, एक उदय का भाई और दूसरा मजनू का भाई, फिल्म में ये भी घुस पड़े।
3: ये कोई पेंटिंग है घोड़े के ऊपर गधा?
4: मैं बताता हूँ मेरी पेंटिंग, गधे के ऊपर घोड़ा।
0: पेंटिंग की सिक्वल पहली बार देख। हमारे फिल्म आर्मी वाली,
5: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है।
0: अन्ना, कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या? माइंड फैंटास्टिक।
6: वो जो छपरी ने किया है ना, अपने को भी करने का है।
0: ये
7: एक्शन मेरे को नहीं करने का एक्शन।
1: गाँव वालों, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली है।
8: अरे हमारे भारतीय फौजी आए हैं,
1: ये आजादगंज को आजाद कराने आए हैं।
9: अपने घर
10: इसको कच रोल दे दिया, ये तो हमें खा जाएगी।
11: अरे वो पुरानी चावल है।
10: मैं किस लिए फिल्म में?
11: ग्लैमर क्लाइमेक्स शूट कर ले क्या?
0: तो कैसे करेंगे? विलन चाहिए, गुंडे चाहिए, कहाँ से लाएंगे? इनको असलियत बतानी पड़ेगी कि हम लोग असली आर्मी वाले नहीं है।
12: हमें जाने दो मालिक, हम सब भांड है, रोजी रोटी के लिए काम करते हैं।
11: तेरी शक्ल कहीं देखी हुई है।
8: आप फ्लॉप फिल्म में भी देखते हो?
13: पाजी आप जाके समझाओ ना, आपका नाम तो दलेर है।
0: क्या दलेर? दलेर दलेर नाम होने सर पे दलेर नहीं हो जाता।
14: मेरी बीवी का नाम शांति है, सारा दिन चपड़ चपड़ करती रहती है। मेरी साली का नाम शर्मिली है, उससे बेशर्म लड़की मैंने आज तक कहीं नहीं देखी।
0: तन बड़ा शौक ना दलेर बने था, जब तू बने दलेर तो मैं मेहंदी।
15: कंग्रेचुलेशन।
16: Let's go!

0: hat for your handsome boy?
1: No, I'm not her.
2: तूने तो ऐसे रिएक्ट किया जैसे तुझे किसी ने गाली दे दी हो, इतनी बुरी हो मैं।
1: मैंने तो ये सोच के कहा था कि तुझे बुरा ना लग जाए।
3: पता नहीं मैं तेरे लायक भी हूँ या नहीं।
2: Hey. कपड़े पहन के कौन सोता है?
3: तो वैसे ही
2: ट्राई करना। योर गर्ल्स एंड योर बॉयज विल थैंक यू। बेबी यार इट्स टू लेट।
1: मैं तो सिर्फ अपने बॉयज को थोड़ी फ्रेश एयर दे रहा था।
2: रियली
1: व्हाई नॉट।

0: तू अब तक सिंगल कैसे?
1: जो जब तक है तब तक है, ये फॉरएवर वाली बकवास है तुम्हारी। सब अपनी अपनी एक्सपायरी डेट के साथ आते हैं और एक्सपायरी डेट के बाद तो दवा भी जहर बन जाती है, राइट? दोस्ती की कोई वैल्यू नहीं है ना तुझे, उतने अच्छे दोस्त भी नहीं है।
2: वो कुछ कर तो नहीं लेगा,
3: हमारी बेवकूफी पे वो अपनी जान के लेगा।
2: जान लेगा? What is wrong with you? सीधा सुसाइड पे पहुंच के
3: ये क्या मतलब सब कुछ करेगा?
2: अरे बोल दे

0: क्या बात करे बोलो,
1: सौदा कर रहे तेरा। मैंने कहा हीरा मिल ही गया तो बोली लगा ले।
0: मेरा नहीं कोहिनूर हूँ, इतना आसान नहीं है मुझे खरीद।